0: साथ आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मान। नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा।
1: जो जी होए सो गुए मुह का कया वाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एने आओ महला दूजा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए

0: के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

0: हुने तुसी सर्वन कर रहे सी भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। तुसी साड़ी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साड़ी स्टूडियो की घड़ी मुताबिक सवेर के 6:30 हो रहे हैं। तो आओ हुण तुहानू सुनाने प्रोग्राम खेतीबाड़ी।
1: खेतीबाड़ी

हुने तुसी सुनिया प्रोग्राम खेतीबाड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 6:40 हो रहे ने ते आओ हुण सरवण करदे आं मानस कांड दा 121वां पाक।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

आओ हुण तुहानू परिचय तहत जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स की। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे जी प्रोग्राम सोहनी सवेर। सवेरे 8:40 ते समा रहेगा जी पंजाबी फिल्मी गीतां दे प्रोग्राम महक पंजाब दी दा। सवेरे 9:02 ते तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च आज तुसी कलाकार पंडित भीम सेन जोशी वालों शास्त्रीय गायन राग सुर मल्हार सुनोगे। 9:30 तुसी सुनोगे गजलां। सवेरे 10:02 ते समा रहेगा जी तुहाडे मन पसंदीदा प्रोग्राम हालो फरमाइश दा। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकदे हो। दिल्ली तुसी नंबर डायल करना है 0181-2342-173। 11:05 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम तमक जलंधर पैंती। 12:05 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम वज दे वेड़े दा। इस प्रोग्राम च अज तुसी नैशनल डॉक्टर्स डे ते वन महोत्सव हफ्ते बारे जानकारी सुनोगे। ते सांझ च अज तुसी डॉक्टर्स दी जिंदगी च एक नज़र बारे गलबात सुनोगे। मेरी कलम तो अज तुसी मलकीत कौर बसरा होरा पासों कहानी सुनोगे। फौजी वीरां लई प्रोग्राम दोपहर 1:15 पेश कीता जाएगा। बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस चाज तुसी कलाकार अमरीक सिंह गाजीनगर दियां लोक कथावां सुनोगे। साड़ी

0: जी सभा च शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे सदा बहार गीत। शाम 4:30 तुहानू लै चलांगे गुरु नगरी अमृतसर, जिथे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार, देहाती प्रोग्राम होवेगा जी शाम 6:30। तो अज तुसी इस प्रोग्राम च मेरी खेती इस पंथखवाड़े दे रुझावे उत्ते वार्ता सुनोगे, ते वार्ताकार होंगे जयपाल चोपड़ा। शाम 7:45 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम पंजाबी वार्ता दा। इस च अज तुसी वातावरण मसले प्रभाव ते समाधान बारे जानकारी सुनोगे, ते इस प्रोग्राम च वार्ताकार होंगे अमृतपाल सिंह। रात 8:00 तुसी सुनोगे अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम ते साडा इवनिंग शो जिंदगी हसीन है। रात 9:00 समा रहेगा जी न्यूज़ 8:09। 9:15 स्पॉटलाइट ते 9:30 पेश किया जाएगा चर्चा का विषय। तीनों प्रोग्राम साढ़े दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाएंगे। रात 10:02 ते तुसी सुनोगे अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश। सो ऐसे जी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा। हुण तो बस कुछ ही पलों च तुसी साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत च समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संभाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिम एशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरन्तरनीतिः पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठुनीत्या एव भवितुमर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25 दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तंत्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92,65,000 कोटि रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्यास्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढसमन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25,65 दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं 3-दिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह 16 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति।

0: इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणम् एव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक स्पीड दे 7 बज रहे ने। हुन पेश ने आज दिया मुख खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जय शंकर ने कहा है कि भारत ने 26 तो वध देशों नाल 28 प्रवास अते आवाजाई भाईवाली समझौतियां ते दस्तखत कीते ने। सरकार ने पछमी एशिया विच चल रहे टकराव दे मद्देनज़र महत्वपूर्ण पेट्रोकैमिकल उत्पादा ते पूरी कस्टम ड्यूटी छूट 15 जुलाई 2026 तक वधा दिती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों नू सिक्ख्या नू एक न्यायपूर्ण अते समावेशी समाज दे निर्माण लई एक साधन वजू वर्तन दा सद्दा दिता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक मजबूत आर्थिकता मजबूत रक्षा समर्थावां दी नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा विच जनतक हिस्सेदारी दा सद्दा दिता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दे 650वें प्रकाश पुरब संबंधी पंजाब मोबाइल डॉक्यूमेंट्री वैना नू रवाना कीता। पंजाब दे सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला विखे संबंधित विभागों के अधिकारियों नाल ड्रेनेज प्रबंधा दा लिया जायजा। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट दा पर्दा फाश कर दिया 4 मुलजमानों 4 पिस्तौलों अते 5 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया। अते मौसम विभाग ने अज तो 6 जुलाई तक पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी बारिश अते तापमान विच गिरावट की पेशनगोई की है। एसन अज दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर नू थोड़ा जा इंतजार होर।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक सवेर दे 7:03 हो रहे ने ते हुण पेश करन जा रहे हैं प्रोग्राम सोहणी सवेर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हसदा वसदा रहे तुहाडा परिवार। ते लो जी, सोहणी सवेर दे सोहणे जे वेले हुण वेला हो चुके है तुहाडे मन पसंदीदा प्रोग्राम सोहणी सवेर दा। ते सोहणे जे सफ़र च मैं तुहाडी दोस्त शुभता रहांगी जी, तुहाडे नाल बहुत सारियां गल्लां करांगे। दोस्तों, सवेर दा वेला जिहड़ा है हुण बहुत अपने नाल बहुत सारिया बख्शिशा लैके आया है, शुरू हो चुके है ते तुहाडा प्रोग्राम जिहड़ा मन पसंदीदा है वह भी शुरू हो चुके है। दोस्तों, जदों असीं सवेरे अखां खोलदे हाँ तां अक्सर दिन दे कम्मां बारे सोचना शुरू कर दिंदे हाँ, पर जेकर दिन की शुरुआत एक पल रुक के एक एहसास ऐसे एहसास नाल करिए कि रब ने सानू एक होर नवा मौका दिता, एक होर नवा दिन बख्शे, अपने दा साथ दिता है, तंदुरुस्ती दिती है अते जीन दा सानू मौका दिता है, तो यकीन मनो दोस्तों सारा दिन जड़ा ना वो बहुत सोहना बीतदा है। कहिंदे ने जदों इंसान नू अपनियां नेमतां दा एहसास रहिंदा है ना तां शिकायतां अपने आप घट हो जांदियां ने, ते जदों शुकराना दिल विच वस जावे तां जिंदगी भी मुस्कुराण लग पैंदी है। सो आओ जी, अज दी सोहणी सवेर दी शुरुआत करदे हां रब दे शुकराने दे नाल, एक चंगी सोच नाल ते एक प्यारी मुस्कान दे नाल। मैं तुहाडी दोस्त शुभता अगले एक घंटे 8 बजे तक तुहाडे नाल बने रहना है, बहुत सारियां जानकारियां तुहाडे नाल आपां शेयर करनियां इस प्रोग्राम च, ते सोहणे सोहणे गीत भी तुहाडे लई प्ले करने ने। तुसीं बने रहना है साडे नाल अपने आकाशवाणी रेडियो ते। फिलहाल प्रोग्राम सोहणी सवेर दा करदे हां आगाज़ इस सोहणे जिहे गीत।

बिल्कुल जी, मिलके शुक्राना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जेकर ज़िंदगी नू असी होर सोना बनाना है। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट की आवाज़ च इस सोहना जहा गीत तुसी इंजॉय कर रहे सी प्रोग्राम सोनी सवेर च। तो दोस्तों हुन वेला हो चुके है अज के शुभ विचार दा। दोस्तों सियाने कहंदे ने कि इंसान का जिहड़ा असल किरदार है ना वह दो वेलियां च सामने आंदा है, एक उदों जदों उसदे कोल सब कुछ होवे ते दूजा उदों जदों उसदे कोल कुछ भी ना होवे। जदों रब सानू कामयाबी दौलत या फिर इज्जत बख्शता है ना दोस्तों, तो साडा लोगों नाल विहार किहो जिहा है यह साडी इंसानियत दसदा है। अते जदों जिंदगी औखे इम्तिहान लैंदी है तो साडा रब ते भरोसा किन्ना मजबूत है यह साडी आस्था दसदा है। सो दोस्तों चंगे दिनों विच निमर रहो ते औखे दिनों विच सबर रखो, यही इंसान की जिहड़ी है ना वह असल खूबसूरती है। इसे सोहने विचार दे नाल प्रोग्राम सोहनी सवेर च वधदे अगे ते अमरिंदर गिल दी आवाज़ सुनदे आ सोहना जिहा गीत।

लता मंगेशकर दी आवाज़ तो इंजॉय कर रहे थे जी गीत। दोस्तों प्रोग्राम चके वधदे आ जिवें कि हर दिन सानू किसी ना किसी महान शख्सियत की याद दवाउंदा है, उसे तरह जी अज दा जिहड़ा दिन है वो सानू आज़ादी संग्रामी समाज सेवी अते भारत रत्न नाल सम्मानित राज ऋषि परशोत्तम दास टंडन जी की पुण्यतिथि की याद दवाउंदा है। दोस्तों परशोत्तम दास टंडन जी दे ने भारत की जिहड़ी आज़ादी की लड़ाई विच बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़ा रोल है वो अदा किया, महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने पाया। वो सादगी ईमानदारी अते देश प्रेम लई जाने जाते सन। उन्होंने राज ऋषि की उपाधि जिहड़ी है वह भी दिती गई अते सन 1961 विच देश के सब तो वड्डे नागरिक सम्मान भारत रत्न नाल उन्होंने सम्मानित किया गया। दोस्तों उन्हों का एक सब तो वड्डा योगदान हिंदी भाषा नूं राष्ट्रीय पद्धर ते मान दवाउण लई उन्होंने जिहड़े कीते यतन सी ओह सन, पर इस तो वड्डी गल इह सी कि वह हमेशा देश अते समाज की सेवा नूं अपना फर्ज मनते सन। उन्हों का जिहड़ा जीवन सी उह सानूं इह सिख्या दिंदा है दोस्तों कि जे नीयत साफ होवे ते मन च देश सेवा का जज्बा होवे तां इक जिहड़ा व्यक्ति है वह समाज विच वड्डा बदलाव लिया सकता है। अज उन्हां दी पुण्यतिथि है जी ते असी उन्हां नूं सत्कार नाल याद करदे हां। उन्हां ने जिहड़े काम किए जो देश लिए किया उन्हां दे आदर्शां नूं नमन करदे हां। दोस्तों महान शख्सियतां साढ़े विचकार भावें शरीरक तौर पर नहीं हों नहीं रहिंदियां, पर उन्हां दे विचार अते उन्हां दे कीते जिहड़े काम ने ना वह हमेशा सानू सही राह दिखाते हैं। इसी सोहनी सोच दे नाल प्रोग्राम सोहनी सवेर च अगे वधे, क्योंकि जिंदगी दोस्तों जिहड़ी है ना वह बहुत कुछ सिखाती है। तो जेकर असी जिंदगी जिहड़े लोगों ने बहुत जो जिंदगी होर कुछ कर गए ने, जेकर असी उन्होंने जिंदगी तो कुछ सीखीए तो फिर साढ़े लिए वो एक बहुत वड्डी सिख हो जाती है। लता मंगेशकर की आवाज़ लो जी सुनो है सोहना जिहा गीत।

वाह जी वाह। दोस्तों कहिंदे ने कि रब हर था आप नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसने कुछ लोगों नूं अजिही सेवा ते जिम्मेदारी दित्ती है जो मुसीबत वेले फरिश्ते बन जाते ने, बन के साडे कोल आ जाते ने। उन्हां विच्चों एक है जी डॉक्टर्स। जदों कोई दर्द विच हुंदा है, जदों उम्मीद टुट्टन लगती है, उदों डॉक्टर ही हौसला पाते ने। इसलिए कई बार लोग जिहड़े ने उन्हां नूं धरती ते रब दा रूप भी कहिंदे ने। तो दोस्तों अज दा जिहड़ा दिन है, क्योंकि हर दिन असीं कहिंदे कोई ना कोई अपने नाल खास ते कोई ना कोई याद जरूर ले

रूप कुमार राठौर दी आवाज़ से तुसी सुन रहे सी जी। बहुत सोहना जिहा गीत प्रोग्राम चल रहा सोहनी सवेर। दोस्तों एक छोटी जी जिहड़ी टिप है प्रोग्राम च जरूर तुहानू देवांगे, ब्यूटी टिप है। अजकल सोशल मीडिया जिवें कि बहुत ज़्यादा बहुत सारिया उत्थे टिप्स जिहड़ियां ने मिल रही ने, तो लोग उस पर्टिकुलर ट्रेंड नू फॉलो करन लग पैंदे ने। जिवें कि बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड वध गया जी कि अपने जिहड़ा साडा फेस हैगा उहदे ते बर्फ लाण दा, आईज फेशियल जिहड़ा है वह लोग कर रहे ने, ते डरमाटोलॉजिस्ट उहनू लैके की कह रहे ने उहदे बारे असीं तुहानू दस्सांगे। हर कोई चाहुंदा है जी बिना मेकअप तो ही साडा जिहड़ा फेस है साडा जिहड़ा चेहरा है वह बहुत फ्रैश लगे, ग्लोइंग लगे। तो सोशल मीडिया ते आइसिंग, फेस आइसिंग दा ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिहदे करके लोग चेहरे ते अपने बर्फ लाँदे ने, ते दस्या जाता है कि मिनटा च ग्लो आ जाता है। पर कुछ गल्लां ने दोस्तों ये फायदे तो नहीं, इंस्टेंट ग्लो भी आता है, जिहड़े पोर्स ने वो टाइट हो जाते हैं, जिहड़ी तुहाडे फेस ते स्वेलिंग हुंदी वह भी घटती है, स्किन नूं ठंडक मिलती है, तो डार्क सर्कल्स जिहड़े ने वह घट जाते हैं। पर बहुत सारे लोग जिहड़े ने अलग अलग स्किन टाइप के होंगे ने। हुण किहड़े लोग डर्मेटोलॉजिस्ट ते इह कहिंदे ने कि किहड़े लोग जिहड़े ने वह बर्फ चेहरे ते ना लाण, जिवें कि जिन्हां दी स्किन बहुत सेंसिटिव है ठंड, जिन्हां नूं काफ़ी जिदा एलर्जी जिहड़ी हो जाती है ठंडी चीज़ जिदा बर्फ है उहदे नाल एलर्जी हुंदी है, स्किन इनफेक्शनस ने, या फिर जिहड़ा नर्व सेंसिटिविटी है वह जिहड़ा है वह लोग खास तौर पर ध्यान रखन, जिन्हां नूं कई सारी स्किन कंडीशनस जिहड़ियां ने जिन्हां नूं प्रॉब्लम है, जिवें कि कईआं नूं लगांदे आ रेडनेस जिहड़ी है हो जाती है, या फिर एक्ने हो जाती है, एग्जीमा, जिन्हां नूं यह प्रॉब्लम है वह भी इस नूं फॉलो ना करन, ते अपने आप नूं ही बॉडी नूं दोस्तों पता लगन लग पैंदा जदों असीं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ नूं ट्राई करते हैं। नो डाउट फायदा है, लेकिन जदों असीं किसी चीज़ नूं एक्सेस च करते बहुत ज़्यादा करन लग पैंदे आ ते फिर उहदे नुकसान भी ने। प्रोग्राम सोहनी सवेर च इस तरह ही जानकारियां दा जिहड़ा सिलसिला है ना वो जारी रहेगा। अगे प्रोग्राम च होर भी बहुत कुछ है तुहाडे लई, पर तुसीं बने रहना साडे नाल। फिलहाल ये गीत बहुत सोहना जिहा है, लो जी करो इंजॉय।

हाँ जी दोस्तों, हुन प्रोग्राम सोनी सवेर च वेला है जी। तुहानू मौसम दे बारे जानकारी देंदा कि IMD वालों की जानकारी आई है। तो तुहानू दस दिए, मौसम विभाग वालों अज तो 6 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी बारिश ते तापमान विच गिरावट दी पेशनगोई कीती है। तो जेकर असी गल करिए जलंधर शहर दी, ते जलंधर शहर च भी सवेर तो ही मौसम जेहड़ा है ना वो सोहना होया, लेकिन हल्की हवा चल रही है, पर जिहड़ी उमस है ना वो हले भी बरकरार है। पर असी ए उम्मीद करते हाँ कि रब मेहरबान होवे, बारिश होवे, ठंड पै जाए। तो मौसम विभाग वालों दोस्तों 1 जुलाई यानी कि अज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कहा जा रहा है कि 40 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल जिहड़ी है ना तेज़ हवावां चलनगियां, गरज चमक ते बिजली दी भी जिहड़ी है वो मौसम विभाग वालों संभावना जताई गई है। तो 2 जुलाई नूं कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत च जिहड़ा वैस्टर्न डिस्टर्बेंस ने वो एक्टिव होणगियां, तो जिहदे करके बारिश जिहड़ी हो सकदी। कुल मिला के 6 जुलाई तक दोस्तों पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह दी पेशनगोई मौसम विभाग वालों की गई, जिहदे करके तापमान च गिरावट होएगी। तो उम्मीद करदे आ मौसम सोहना होवे तां जो साडा जिहड़ा मूड है वह भी पूरा दिन सोहना सोहना एकदम एंथुजियास्टिक ते पूरा फ्रैश हो जाए। फिलहाल मूड सोहना करन लई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ।

हाँ जी दोस्तों, हुन जिहड़ी घड़ी दी आ जिहड़ियां सुइयां ने ना इशारा कर रही हैं प्रोग्राम सोहणी सवेर नूं खत्म करन दी। उम्मीद करदी हाँ कि अज दी इस सवेर च सांझियां कीतियां गल्लां, सोहणे विचार ते प्यारे प्यारे गीतां ने तुहाडे दिन दी शुरुआत नूं होर खूबसूरत बना दित्ता होएगा। जांदे जांदे बस इन्ना ही कहांगी, हर नवे दिन दी जिहड़ी शुरुआत है उहनूं शुकराने नाल करो, हर मिलन वाले इंसान नाल प्यार नाल पेश आओ ते हर छोटी छोटी खुशी नूं दिलों महसूस करो। यकीन मन्नो फिर हर सवेर सचमुच सोहणी सवेर बन जाएगी। मैनू अपनी दोस्त शुभिता नूं हुण इस आखरी गीत नाल इजाजत दो ते बने रहो आकाशवाणी रेडियो ते।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गाँवों की

0: वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को

0: समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
1: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
1: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र

0: ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट

0: Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां मनरेगा दी थां ते विकसित भारत च रमजी कानून अज तों लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिशकियां नाल पश्चिमी एशिया च हालिया गतिविधियां बारे टेलीफोन ते गलबात की। जापान के प्रधानमंत्री सनेया ताकाइची भारत के तीन दिन दौरे ते अज नवी दिल्ली पहुंचेंगे। अज देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है ते भारत ते इंग्लैंड दरम्यान मर्दां दी पांच मैचां दी 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी का पहला मैच खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल मनरेगा दी थां ते विकसित भारत जीरामजी कानून अज तों लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीरामजी कानून तहत सोधियां उजरत दरां नूं नोटिफाई कीता है। देहाती विकास मंत्रालय वालों जारी एक नोटिफिकेशन मुताबिक सारे राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां विच उजरत दरां विच वाधा कीता गया है। मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार 300 रुपये प्रति दिन की अंतरिम मूल उजरत दर लागू की गई है ते यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम तहत नोटिफाई की कोई भी दर इस तों घट ना होवे। मनरेगा अधीन राष्ट्रीय औसत उजरत 298.80 रुपये फी दिन तो वधा के VBGRAMJI अधीन 327.40 रुपये फी दिन कर दी गई है। ये उजरत दर औसतन 10% तो वाधा वाधा दर्शाता है। 21 राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां विच जिथे उजरत पहला 300 तो घट सी हुण नवीआं दरां लागू कर दित्तियां गईआं ने। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल असाम अरुणाचल प्रदेश ते हिमाचल प्रदेश उन्हां राज्यां विचों ने जिथे उजरत दर विच 15% तो 25% वाधा होया है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सोध नूं देहाती खुशहाली राहीं विकसित भारत दे टीचे वल इक इतिहासक कदम दस्सिआ है। मंत्रालय ने भी कहा कि ये कदम गरीबों की भलाई अंत्योदय 2047 तक विकसित भारत प्रति सरकार की वचनबद्धता विच एक मील पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजिशकियां नाल टेलीफोन से गलबात की। राष्ट्रपति पजिशकियां ने श्री मोदी को पश्चिमी एशिया विच हालिया गतिविधियां बारे जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वख-वख धिरां विचकार हुई मौजूदा सहमति का स्वागत किया ते गलबात ते कूटनीतिक तरीकों नाल सारे मुद्दों नूं हल करन ते भारत दे रुख नूं दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिमी एशिया विच स्थाई शांति अते स्थिरता दे नाल नाल सुरक्षित नैविगेशन ते व्यापार लई निरंतर यतना ते जोर दिता। ईरान दे राष्ट्रपति ने शांति स्थिरता ते खेतरी सहयोग नूं उत्साहित करन विच प्रधानमंत्री मोदी दियां निजी कोशिशां दी तारीफ की। ईरानी दूतकार ने कहा कि गलबात दौरान राष्ट्रपति पजिशकियां ने भारत विच ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग सफलता नाल कराउण ते संतुष्टि प्रगट की। भारत नाल संबंधां नूं होर मजबूत करन लई ईरान की वचनबद्धता नूं दोहराउंदे होए राष्ट्रपति पजिशकियां ने कहा कि दोवें देशों के संबंध इतिहासक विरसे ते आपसी सत्कार ते आधारित ने। जापान के प्रधानमंत्री सने ताकाइची अज शाम भारत के तीन दिन दौरे से नवी दिल्ली पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत का पहला अधिकारित दौरा होगा। वह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल 16वें भारत जापान सालाना सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन दोवे धिरों नूं समुचे दवले सहयोग की समीक्षा और मजबूती के नाल नाल आपसी हित के खेतरी आलमी मुद्दों से विचार वटांदरा करन दा मौका प्रदान करेगा। साढ़े पत्रकार ने खबर दी है कि भारत अते जापान सदियां तो सभ्याचारक ते सभ्यता दे वटांदरे अध्यात्मिक सांझ ते आजादी लोकतंत्र अते कानून दे शासन प्रति सत्कार दियां सांझियां कदरां कीमतां वाली एक लंबे समय तो चली आ रही मित्रता सांझी करदे ने। केंद्र सरकार ने अज 1 जुलाई तो शुरू होने वाले पंद्रवाड़े लिए पेट्रोल डीजल और हवाबाजी ईंधन से बरामदी ड्यूटी दरां नूं सोधिया है। खजाना मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन मुताबिक सोधिया हुई दरां विच पेट्रोल से 4 रुपये फी लीटर की बरामदी ड्यूटी शामिल है जदों की डीजल से ड्यूटी 14 रुपये तो घट के 8 रुपये 50 पैसे हुई।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। पेश करन जा रहे हैं प्रोग्राम महक पंजाब दी। पंजाबी फिल्मी गीता दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म मिनी पंजाब चों गुरदास मान, मास्टर सलीम ते जसपिंदर दा गाया।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

वाह जी वाह। दोस्तों हुनी तुसी जगजीत सिंह जी ते चित्रा सिंह जी दी ओह सदाबहार गज़ल सुनी जिसदे हर अल्फाज विच मोहब्बत की खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है। दोस्तों

दोस्तों हुने तुसी सुनी भुपिंदर सिंह जी दी गज़ल, बहुत सोहनी। हर अल्फाज विच एक दुआ सी, एक दर्द सी, ते जिंदगी दे तजर्बियां दियां डूंगियां सच्चाइयां सी। ते हुन इस महफिल दा रंग दोस्तों थोड़ा जिहा बदल दिया। हुन होवेगी गल किसी दी खूबसूरती दी, उस दी सादगी दी, अते उस एहसास दी जदों किसी दी एक झलक ही दिल ते अपना असर छड जावे। इन्हां ही नरम जज्बातां नूं अपनी मखमली आवाज विच पेश कीता है जी पंकज उदास जी ने। ते आओ फिर सुनते हैं पंकज उदास जी की एक खूबसूरत गजल।

0: 留在。मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 10 बज रहे ने। हुण पेश ने अज दीआं मुख खबरां। मनरेगा की थां ते विकसित भारत जी राम जी कानून अज तो लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकिया नाल पछमी एशिया च हालिया गतिविधियां बारे टेलीफोन ते गलबात की। जापान के प्रधानमंत्री सेन टाका इते ही भारत ते 3 दिना दौरे ते अज नवी दिल्ली पहुंचणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु विखे आंध्र प्रदेश केंद्रीय यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन विच शामिल होणगे। तेल मार्केटिंग कंपनियां ने अज 19 किलोग्राम वाले व्यापारक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपए घटा दिती है। जम्मू कश्मीर विच सलाना श्री अमरनाथ जी यात्रा लई सारे जरूरी प्रबंध मुकम्मल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सवेरे 4 बजे पहले जत्थे नू हरी झंडी दिखा के रवाना करनगे। पंजाब दे तेजी नाल घट रहे जमीन हेठले पानी नू संभालन अते सिंचाई बुनियादी ढांचे नू मजबूत करन लई पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 34.51 करोड़ रुपए दे कल्याण वाटर कोर्स कंक्रीट लाइनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। मावां धीआं सत्कार योजना तहत पंजाब सरकार अज 3 महीनों की सत्कार राशि इक्को किश्त विच जारी करेगी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब के बठिंडा के सरहिंद नहर लिंक रोड नेड़े हुई गोलीबारी तो बाद 4 मुलजमान 2 आधुनिक पिस्तौलों गिरफ्तार किया है। अमरनाथ जी यात्रा से जा रहे 4 श्रद्धालुओं की बठिंडा नेड़े सड़क हादसे विच मौत, कई होर जख्मी। अज देश भर विच राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। भारत अते इंग्लैंड दरमियान मर्दा दे 5 मैचों की 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लड़ी का पहला मैच अज चेस्टर ले स्ट्रीट दे रिवरसाइड ग्राउंड विखे खेडिया जाएगा। 5 तो 18 जुलाई तक बेलजियम दे आउंदे एक्सपोजर दौरे लई भारत दी मर्दां दी 22 मैंबरी जूनियर हॉकी टीम दा ऐलान कर दिता है। डिफेंडर अनमोल एका टीम दी अगवाई करनगे। एसन अज दीआं मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ते भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी घड़ी मुताबक स्पीड 10:03 हो रहे हैं ते हुन वेला हो चुके है जी तुहाडे मन पसंदीदा प्रोग्राम हालो फरमाइश दा। प्रोग्राम च तुहाडे मन पसंदीदा गीत असी जड़े है वो प्ले करांगे, लेकिन उहदे लिए तुहानू प्रोग्राम च शिरकत करनी पएगी। ओ किवें करनी है जी? उहदे लिए तुसी नंबर डायल करना है। नंबर है जी 0181-2342-173। नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो ते अपने मन पसंदीदा गीत करो। फिलहाल तुसी प्रोग्राम च शिरकत करन दी कोशिश करो। तद तक नाल दे नाल इंजॉय करो राहत फतेह अली खान की आवाज़ च इस सोहना जिहा गीत फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हनिया चो।
1: बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

मोहम्मद रफी ते आशा भोसले दा गाया फिल्म नीला आकाश। लो जी सुनो एकी।

0: बिल्कुल जी, वक्त गुजर जाता है और वक्त हले है प्रोग्राम हलो फरमाइश नू ते तुसी सुन रहे सी जी मोहम्मद रफ़ी ते आशा भोसले दे आवाज़ च गीत। तो आओ जानते हैं हुन अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हलो हलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी, गुड मॉर्निंग जी। मैडम जी,
0: नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे ने जी?
1: मैडम बिट्टू बोल रहे जी, दूरदर्शन देख सकते मंगू सी जंदे मैडम जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुम्हारा साढ़े इस प्रोग्राम च।
1: थैंक यू, प्रोग्राम बहुत वधिया पेश कर रहे हो मैडम जी,
0: बहुत बहुत
1: बढ़िया
0: शुक्रिया
1: लग रहा
0: जी,
1: है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, किन्नी देर बाद कॉल लगी है तुम्हारी?
1: 15 दिन हो गए जी।
0: ठीक है जी, 15 दिन बाद कॉल लगी है। तो फिर आज केड़ी फरमाइश है तुम्हारी, की फरमाइश है, केड़ा गीत सुनना
1: सुना
0: है?
1: जी, आप आई बाहर है फिल्म उसका गाना जी, कोजल क्यों गाए सुना दो वो मेरे मन। शुक्रिया
0: ठीक है जी, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी ते साथिया
1: जी,
0: लगाया गी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने ली।
1: थैंक यू जी, ओके जी, बाय।
0: बाय। ओके जी, इन्हां दी फरमाइश असं जरूर पूरी करांगे, तुहाडी फरमाइश भी जरूर पूरी करांगे। उहदे लिए नंबर डायल करो 0181 2342173। प्रोग्राम च शिरकत करो, अपने मन पसंदीदा गीत सुनो। फिलहाल लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी ते साथियां दा गाया बहुत सोहणा जिहा गीत, फिल्म आप आए बहार।

0: हूँ आ रही है, मैं ऑडिबल हूँ। हेलो।
1: हाँ ठीक है जी।
0: हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: जी मंडी अरनी वाला जिला फाजिलका, प्रकाश सिंह खोखर, साल दी दूजी कॉल है जी।
0: अच्छा जी, साल दी दूजी
1: 2000
0: कॉल है।
1: फरवरी च लाया सी जी।
0: फरवरी च लगाया सी ते फिर हुन जुलाई दा महीना है, पहली तरीक है
1: हाँ जी
0: अज, तो थोड़ी कॉल लग गई
1: हाँ जी
0: है। खुश हो फिर अज कॉल लगी है?
1: बढ़िया, खुश है। पुराने कॉलर आई असि समा
0: ठीक
1: बहुत
0: है
1: पूरा दिने लोगों वास्ते।
0: ठीक है जी, पुराने कॉलर हो ते आज थोड़ी कॉल लग गई है, फिर की फरमाइश है थोड़ी, केड़ा गीत सुनोगे?
1: असि प्रेम रोग पिक्चर का सुनना है जी।
0: ठीक है जी, प्रेम रोग फिल्म चो केड़ा गीत?
1: हाँ जी, मेरी किस्मत में तू नहीं शायर, मैं तुझे कल भी प्यार करता था जी
0: ठीक
1: का।
0: है जी, लता मंगेशकर ते
1: हाँ जी लता
0: सुरेश
1: मंगेशकर।
0: वादकर दा गाया ते 1982 च फिल्म आई सी। ठीक है
1: हाँ जी
0: जी,
1: हाँ जी
0: जरूर कर दे
1: ठीक है
0: थोड़ी
1: जी, ओके,
0: फरमाइश पूरी।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू। लो जी, इन्हां दी फरमाइश कर दे पूरी, ते तुसी भी उन्नी देर तक अपनी फरमाइश दसो क्योंकि हाले भी समा बाकी है, ते प्रोग्राम च शिरकत करो 0181 2342 173 नंबर डायल कर।

अपने समाचार के साथ मैं कनकलता। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इसे ग्रामीण भारत

0: सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे, परिसंपत्ति सृजन की गति तेज होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार देश के विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस छूट से प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर को लाभ होगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपए में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान से जुड़े व्यवसायियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 11 बज रहे ने ते हुण समा हो रहा है तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम पेश करन दा तमक जलंधर पेन दी। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम दे विच सुनदे हो तुसी अपने मनपसंद गीत सानू फरमाइशां करके वट्सअप के जरिए। सो इस प्रोग्राम में अपने मनपसंद गीत सुनने वास्ते अपनी फरमाइशा साढ़े को पूरी करवाने वास्ते एक फोन नंबर दे रहे हैं। तुसी उस फोन नंबर नू डायल करके वट्सअप से जाके करना की है, अपना नाम टाइप करना, अपने शहर का नाम टाइप करना, अपन का नाम टाइप करना जो इस गीत

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मध्ये रंजूबाई तांगड, युवराज सिंह तांगड ते शिवांगी तांगड। अगली फरमाइश सानू आई है जी, पिंड बसौली नेड़े ललरालू मंडी ते भेजण वाले ने सूबेदार संधू सिंह पट्टी, आरव पट्टी, शारिका पट्टी, कुलवंत टीनू पट्टी ते उन्होंने बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश सानू आई है जी पिंड करेली बरेली तो, ते फरमाइश भेजी है मुहम्मद आमिर अंसारी, नसीर अंसारी, शम अंसारी, शमीम अंसारी ते माहे नूर अंसारी होरां ने। ये सारी फरमाइश कर रहे हैं कि इन्हों जस्सी गिल की आवाज़ में गाया हुआ गीत सुनाया जाए कोई भी, तो जस्सी गिल के गाए हुए गीत ही सुनना चाहते हैं। न्यू गुरु रामदास कॉलोनी गुरदासपुर तो फरमाइश ही, तो फरमाइश भेजने वाले ने प्रीतम दास अनुंगराना, सत्या देवी अंगुराना, पोतरी वियाना ते पोतरे अविराज खुरा ने भी फरमाइश की है इसे गीत को सुनने की। अगली फरमाइश आई है जी पिंड बुरज मानसा नेड़े मौड़ मंडी जिला बठिंडा तो, भेजने वाले ने फरमाइश राम सिंह तगड़, पिंदर कौर तगड़, कमलप्रीत कौर तगड़। ते अगली फरमाइश आई है जी सुरिंदर जोड़ा नेड़े फाटक मौड़ मंडी तो, गुरजीत नंबरदार मानसा कला तो, मनगीत मान मानसा कला तो, गुरतेज कैंट जलूर पिंड तो, मंगू राजस्थानी मौड़ मंडी तो, ते तगड़ फैमिली फरमाइश कर रही है जस्सी गिल दे गाए गीत नूं सुनने दी। अगली फरमाइश आई है जी फतेहाबाद हरियाणा तो, पुरानी तकसील चौंक तो भेजण वाले ने फरमाइश इंद्रपाल, चंचलपुरी, आंचलपुरी, गगनपुरी, प्रिंसपुरी ते जीवन सिंह बूक तो इलावा पूरा बूक परिवार। सो इन्हें फरमाइश पूरी कराने तो आओ सुनाने तुहानू जस्सी गिल दी आवाज़ में प्यारा जिहा गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत

0: एक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ 12:05 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ।

0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। वसदे वेड़े प्रोग्राम सुन रहे तमाम श्रोतियों का मीनू वालों बहुत बहुत स्वागत है। अज मेरा साथ मेरे नाल प्यार निभाने लई मेरे नाल
1: सिमरन
0: जी सिमरन मेरे नाल ने। सो सिमरन की हाल चाल ने?
1: बिल्कुल ठीक मीनू। असी ना अज स्कूल लग गया बच्चों के, तो मैं कल शामी स्टेशनरी लैके आनी सी। भाई आ चाहिए आ चाहिए चाहिए। उत्थे ना वड्डे वड्डे नक्शे मैप पए सी धरती दे।

0: क्या दिया गया था कि अब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने आप को कई बार हेल्पलेसनेस फील होती है, बुरा लगता है, इवन कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, हमें डेली फेस करनी पड़ती हैं ऐसी चीजें, और काफी हद तक हम इस चीज के अकस्टम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी किसी केस में बहुत ज्यादा दुख होता है।
1: सो क्योंकि तुसी डॉक्टर्स बहुत बिजी रूटीन विच रहंदे हो, इस बिजी शेड्यूल विच तुसी अपने आप नू किवें तंदुरुस्त रखदे हो? क्योंकि एक डॉक्टर खुद सेहतमंद होएगा ता ही ता वो मरीज नू भी ठीक कर पाएगा।
0: डॉक्टर को फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ डॉक्टर हम लोग फिट होंगे, अपने एनर्जेटिक होंगे, तभी हम अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली कहूँ तो मैं एक रेगुलर एक्सरसाइज मॉर्निंग में भी करता हूँ, जिसमें योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती हैं, वो मेरी लाइट एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। बट फॉर माई ओन इंटरेस्ट मैं अपना बैडमिंटन प्ले करता हूँ रात को 8 to 9:30। तो हर डॉक्टर को मैं ये कहूँगा कि रूटीन एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई अपनी हॉबी मेंटेन करनी चाहिए, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस को कम कर सको, भले ही वो कोई स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, क्योंकि डॉक्टर अगर खुद स्ट्रेस में रहेगा तो वो कभी भी अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता है। तो एक तो स्पोर्ट्स या कोई भी हॉबी स्ट्रेस बस्टर होता है, उससे स्ट्रेस रिलीव होता है और आप फिजिकली फिट भी रहते हो।
1: सवेर तो शाम तक मरीजां दे इर्द गिर्द रहंदियां लगातार सेहत सेवावां लई काम करना वाकई तुहानूं शरीरक ते मानसिक पक्खों थका सकदा है। फिर भी ये डॉक्टर्स की मेहनत का ही नतीजा है कि अज साडे देश दे डॉक्टर्स पूरी दुनिया का विश्वास हासिल कर चुके ने। भारत अज दुनिया के प्रमुख मैडिकल टूरिज्म केंद्रां विचों इक है। हर साल हजारां विदेशी मरीज इलाज लई भारत आउंदे ने। जो दुनिया के कई लोग महंगे इलाज ते लंबी उड़ीक तो परेशान होंदे ने, उदो भारत उन्होंने लिए उम्मीद का केंद्र बनता है, जिथे विश्व पद्धरी डॉक्टर आधुनिक तकनोलॉजी ते मनुखी सेवा इकट्ठे होंदे ने, इकट्ठे मिलते ने। दिल दियां सर्जरियां बारे भारत दुनिया विच मशहूर है। अखां दे इलाज विच भारत एक मॉडल मनिया जाता है। IVF ट्रीटमेंट, दंदां दे इलाज लई भी दुनिया भर के लोग भारतीय डॉक्टर्स तक पहुँचते हैं। इसीलिए इन्हां प्रतिभाशाली सियाने भारतीय डॉक्टर्स की बदौलत ही मेडिकल टूरिज्म भारत की अर्थव्यवस्था विच अरबां डॉलर्स का योगदान पा रहा है। जिस तरह डॉक्टर नितिश मरीजों की पीड़ा नूं हंडाउण बारे दस रहे सन, उस तरह ही डॉक्टर शाजिया दस रहे ने कि वह मानसिक रोगों का इलाज करन लग्यां किहड़े पड़ावां चों गुजरदे ने ते किवें खुद अपनी मानसिक सेहत नूं ठीक रख पाउंदे ने।
2: ਸੋ ਬੀਂਗ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡੇ ਇਨ ਐਂਡ ਡੇ ਆਊਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ, 16 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਟਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ MD ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ MD ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਫਲੋ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਧੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ

0: जी तुसी सुन रहे सी साल तहत डॉक्टर दी जिंदगी ते एक नज़र पेश कर रहे सी पूनम ते पेशकश प्रभजोत कौर होरां दी।
1: जी
0: सिमरन किन्ना वधिया है ना कि अज दा दिन सानू दिलों धन्नवाद करना सिखाउंदा है। हर डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ ते सारे सेहत कर्मचारियों का दिलों तनाव धन्नवाद करिए जो दिन रात साडी सेहत लई रक्षा लई समर्पित रहिंदे ने।
1: सही गल आखी। और सानू भी कितने ना कितने ये अपने दिमाग च अपने जहन च गल रखनी चाहिए है बई ये भी इंसान ने
0: बिल्कुल
1: ते दुख तकलीफ दर्द इन्हों भी होंगी है
0: जी।
1: हाँ?
0: ते बहुत

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा

0: रूपया के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन के 1:05 बज रहे हैं। लो सुनो हुण साढ़े दिन के बाकी के रेंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समां।

जी सर, जितो तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शाम 5:30 बजे।

तेरे नाम। इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी उदित नारायण ते अलका याग्निक दिया आवाज़ां च। आओ हुण सुनदियां प्रोग्राम दा अगला गीत, फिल्म दस चुलिया गया, आवाज़ां के ते शान दियां।

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: उन्हें कहा कि ये कानून हर एक देहाती परिवार में 125 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार दिंदा है। इस पहलकदमी विच भरोसा प्रकट करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह पिंडों विच उपजीविका के नवे मौके पैदा करेगा। भाजपा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने शुरुआत विच विरोध करने तो बाद विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी है। नवी दिल्ली विच मीडिया नूं संबोधन करदे हां भाजपा के बुलारे प्रेम शुक्ला ने केंद्र की दिहाती रोजगार योजना नूं लागू करने के पंजाब सरकार के अचानक फैसले से सवाल उठाए। उन्होंने इल्जाम लाया कि भगवंत मान सरकार हुण विधानसभा चोण हारन के डरों बीजी राम जी योजना की शलाघा कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नौजवानों 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण नूं साकार करने लिए समर्पण ईमानदारी और मजबूत नैतिक कदर कीमतों नाल मुहारत हासिल करने का सदा दिता है। आनंदपुर विखे आंध्र प्रदेश केंद्रीय यूनिवर्सिटी के पहले कन्वोकेशन विच मुख मेहमान वजो संबोधन करदिया राष्ट्रपति ने कहा कि नौजवानों की ऊर्जा से वचनबद्धता एक समावेशी और खुशहाल राष्ट्र के निर्माण विच फैसलाकुन भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपति ने ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों नूं जिंदगी भर सीखते रहने लिए प्रेरित किया ते कहा कि तेज तकनीकी तरक्की हर खेतर नूं बदल रही है। उन्हें कहा कि डिग्री प्राप्त करना सीखने का अंत नहीं होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों नूं उभर रही तकनोलॉजियां मुताबक टलन नवे विचारों की पड़चोल करन अते लगन नाल नवीं काढ़ां नूं अपनाउण लई उत्साहित किया। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ xhandle@aarnewsjalandhar। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਧੀਰਜ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 31ਵੇਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪਹੁੰਚ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਟੱਬ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ 8 ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਕ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਏ। तेल मार्केटिंग कंपनियां ने 19 किलोग्राम के व्यापारक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183 रुपए 50 पैसे घटा दी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुताबिक नवीं दरां आज तो लागू हो गई ने। इस कटौती तो बाद हुण दिल्ली विच 19 किलोग्राम का व्यापारक एलपीजी सिलेंडर 2930 रुपए विच उपलब्ध होगा। इस फैसले नाल रेस्टोरेंटां, ढाबियां, होटलां ते खाण पीण के होर कारोबारां नूं फायदा होगा। अज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन जनतक सेहत की रक्षा लिए डॉक्टरों के समर्पण और अनमोल योगदान को उजागर करता है। यह दिन हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म और बरसी की याद में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ते सेहत मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टर दिवस से देश भर के सारे डॉक्टरों को शुभकामनावां दित्तियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ता तहत वेनेजुएला विच राहत कार्यां विच लगे भारतीय डॉक्टरां ते मेडिकल मुलाजमां दी शलाघा कीती है। एक सोशल मीडिया संदेश विच प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किल समय विच लोड़वंदां दी सेवा करन लई उन्हां दा समर्पण प्रेरणादायक है। उन्हां कहा कि मेडिकल मुलाजम हर संकट विच पूरे समर्पण नाल अपने फर्ज निभांदे ने।

0: मोदी ने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी ओदरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान मानसून के दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने हुक्मरानी के निज़ाम को नई शक्ल दी है, शहरियों को बाइख्तियार बनाया है और हमाजहत तरक्की को तेज़ किया है। मुहिम के 11 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल इंडिया ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल अदायगी और फवायद की बराह रास्त मुंतकली DBT के जरिए मुस्तफिदीन तक शफाफ अंदाज में सरकारी स्कीमों के फवायद पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाने का एक मुअस्सर जरिया बन चुकी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 बरसों में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमात तक रसाई के तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI निज़ाम में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़िरात और फलाही खिदमात तक रसाई को उसत दी है। पेश एक रिपोर्ट।
1: भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिले तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निज़ाम में

0: अब तक रियासत में 4 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। 90,499 अफराद मुतासिर हैं। तकरीबन तमाम 28 जिले इस आफत से मुतासिर हैं। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 आज से नाफिज हो गई है। इस नई पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं होगा। इस नई पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते हुए नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए की रियायत भी दी जाएगी और ये पॉलिसी इस बात को भी लाजमी बनाती है कि अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी। 4 साल में मरहलावार तरीके से नाफिज होने वाले इस अहम तरीक़ेकार पर 15,000 करोड़ रुपये के माली अखराजात होंगे। आशिया और खिदमत टैक्स GST की वसूलियाबी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रुपये से साल ब साल 13.9% का इजाफा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानेब बढ़ने का इम्कान है। फीफा आलमी कप में आज सुबह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको ने नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये 40 बरस में आलमी कप में नॉकआउट मरहले में मैक्सिको की पहली जीत है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जीरामजी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी उदरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर तो हाजिर है प्रोग्राम फौजी वीरा ले लेके प्रोग्राम के तोड़दे हैं ते आओ सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया

अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा

0: लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए

0: सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएस

0: आईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे टाइम बज रहे ने, आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम विच अमरीक सिंह गाजी नंगल दियां गाईयां कुछ लोक गाथावां सुनाईयां जाणगियां। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दे शुरू विच लोक गाथा माई गुजरी जी।

0: तेनू लख दे एक सुनावा
1: सुना।
0: तेनू दफ्तर हुणे पचावा
1: सच्ची
0: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई तेनू लख दे एक सुनाना ते तेनू।

महबूब की मेहंदी। इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी मोहम्मद रफी की आवाज़ विच। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम का अगला गीत। मेरे जीवन साथी फिल्म चुनिया गया, आवाज़ किशोर कुमार।

तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। गुरबाणी दे इस फरमान तो पाव है कि सिरजनहार प्रभु सबना दी प्रतिपालना करता है सबना दा साई है सारे जीव उस दे आसरे ही हन वह प्रभु सदा सृष्टि दे जीवां नूं पालदा है ये अकाल पुरख दा बिरध ही है क्योंकि वह मेहर करन वाला है सबना दा साहिब है दयालु है सबना जीवां नूं प्राण उसे ने ही बख्शे हन तो फिर ए जीव तू क्यों डोलदा है तेरी रक्षा करन वाला उही है जिसने तैनू साजिया है जिसने तैनू पैदा किया है उही तैनू आसरा भी दिंदा है जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है उसने ही तेरी सार लैनी है। ओ परवरदिगार प्रभु हर हिरदे विच व्यापक है उसकी सिरजन शक्ति का कोई अंदाजा नहीं वह सब तो वड्डा है ते बेपरवाह है इस करके ए बंदे जिन्ना चर तेरे स्वास हन उससे दी ही बंदगी कर। हे प्रभु तू सर्व कला समर्थ है कथनी तो परे है इंद्रियां दी पहुंच तो परे है ए जिंद प्राण तेरी ही दित्ती हुई रास पूंजी है। हे प्रभु तेरे अगे यही अरदास है कि तेरी रहमत सदका ही मैनू आत्मिक सुखां दी प्राप्ति हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 724 ते तिलंग राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का कथन है तू काहे डोलह प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया भाई मेहताब सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे।

तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सृजनहार, जन पैदायस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया सी भाई महताब सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख का मुढ़ कदीम तो ही सुभा है कि वह सबना का माँ प्यो होण करके सबना की सार लैंदा है। हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक, वो प्रभु ही सबनी थाई रख्या करन वाला है। मन विच विचार आउंदा है कि वह प्रभु किस स्थान ते वसदा है। बाणी विच फरमान है कि सत संगत साध संगत ही प्रभु का निवास स्थान है, क्यों जो साध संगत विच संत जन प्रभु प्यारे भगत साध संग करते हैं, ते करता भी उत्थे ही वसदा है। मिल

0: सत्संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसै जियो। प्रभु ते पूरन भरोसा रखण वाले भगतां दा अकाल पुरख ही सहाई है, राखा है, उन्हां दी रास पूंजी दी रख्या भी करदा है। ऐसे भगत संत जदों गुरु अगे कोई भी अरजोई करदे हन तां ओह परवान हुंदी है ते उन्हां दी इज्जत पद दी राखी ते रास भाव नाम रूपी पूंजी दी रख्या भी सृष्टि दा सरबुच ते मालक प्रभु आप करदा है। सुनदिआं नवप्रीत सिंह होरां पासों वार्ता, रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास।
1: विचार अधीन यह पावन वाक बाणी दे बोहित, महान उस रइए श्रोमणी शहीद गुरु अर्जन देव जी ने बिलावल राग विच उचारिया है अते गुरु ग्रंथ साहब दे अंग 816 ते सुभायमान है। इस पावन वाक अते समुचे शब्द राही गुरु साहिब सोझी बख्शदे हन कि अकाल पुरख अगे बेनती करन द्वारा मनुख नू कोई औकड़ मुश्किल पेश नहीं आउंदी है। वाहिगुरू अपने भगतां दी रास पूंजी दा आप रखवाला है। सारे गुणा नाल भरपूर प्रभु दा नाम सिमर के सारे कम सफल हो जांदे हन। परमात्मा आप साध संगत विच वसदा है अते भगत जना लई साध संगत एक स्थान है जिथे बख्शिशां दी कदे भी तोट नहीं आउंदी है। इत्थे हुण विचार करन दा यतन करदे हां कि ओह अकाल पुरख रखवाला किस तरह है अते भगत दी असल रास पूंजी की है। गुरु ग्रंथ साहिब जी अनुसार निरसंदेह परमात्मा सारी कुदरत दा करता भी है अते पालनहार है। उस दे दैवी हुक्म इंसाफ पसंद भी हन अते सदीवी भी। गुरबाणी विच अकाल पुरख नू सर्व व्यापक अते सब तो वड्डा रखियक मन्या गया है। ओह हर मुसीबत विच अपने सेवकां दी रखिया करदा है क्योंकि प्रभु दी कीर्ति करन वाले भगत ही प्रभु दे मन नू प्यारे लगदे हन। गुरु नानक देव जी आसा दी वार विच प्यारे बचन करदे हन, भगत तेरा मन भाम दे दर सोहन कीरत गाम दे। जिमें कि वाहिगुरु ने शुद्ध चित्त वाले भगत प्रहलाद की रखिया नरसिंह रूप धार के हरनाखश नू अपने नहुआ नाल चीर के कीती। सुथर चित भगत हित भेख तरियो हरनाखश हरियो नख बिदार जियो। परमात्मा सिर्फ बाहरी दुश्मना तो ही नहीं सगो मनुख दे अंदरले पंज विकारां काम क्रोध लोभ मोह अते हंकार तो भी रखिया करदा है। इस वास्ते अरदास करदा है। गुरबाणी फरमान है पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे खेद करह अर बहुत संतावह आयो सरण तुहारे। गुरु अर्जन देव जी गौड़ी राग विच सोझी बख्शते हन कि जदों गुरु दी आत्मक अडोलता देन वाली ते सुख देन वाली बाणी दी बरकत नाल भगत जना ने ओह पंज वड्डे झगड़ालू जित लए हन। जीत लए ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्बाणी। ओह बेअंत अकाल पुरख इस संसार दे डर अते चिंतावां तो मुक्त करदा है। अपने सेवकां भगतां लई ओह एक शक्तिशाली पिता माता अते मालक दे रूप विच है जो उन्हां नूं जीवन दे समुंदर तों बचाउंदा है। माजराग विच पंचम पातशाह दे अमोलक बचन हन, तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पाओ केहा काड़ा जियो। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सरूप सिंह अलग दे शब्दां विच गुरबाणी विच बस नाम दी ही कीर्ति गाई है। ओह गुरबाणी विच नाम दे संकल्प बारे दसदे हन कि नाम समुचे संसार दा आधार है। इस दे आसरे ते ही खंड ब्रह्मंड धरती आकाश टिके हुए हैं।

काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख विसारण हार। इस शब्द का गायन किया सी भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हुण तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विच कम दियां गल्लां, अज दे पा, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल मेरी खेती तहत किसान दिलबाग सिंह चीमा दे नाल होई गलबात सुनवाई जाएगी। इस तो बाद इस पंदरवाड़े दे रुझेवें बारे डॉक्टर जयपाल चोपड़ा जानकारी देणगे। पशु पालन खर्चे घटाउण बारे डॉक्टर विनेंद्र सिंह नाल होई गलबात सुनवाई जाएगी।

7:40 समाचार समीक्षा प्रोग्राम पेश करांगे। पंजाबी वार्ता प्रोग्राम तहत अमृतपाल सिंह दी वार्ता सुनोगे, वातावरण मसले प्रभाव ते समाधान। इस तो फौरन बाद चंद गजलां समात फरमाओगे। रात 8 बजे पेश करांगे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 चर्चा का विषय है प्रोग्राम, तुसे सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 10 बजे समा रहेगा मुख खबरां दा। दस बज के 2 मिनट थोड़ी फरमाइश प्रोग्राम पेश करांगे, जिस विच तुसी फोन इन ते व्हाट्सएप राही अपनी पसंद दे गीत सुन सकोगे। रात 11:10 प्रोग्राम सौगात पेश करांगे जी DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र राही। सो इसी जी अज प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 PM दिहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जी
1: मतलब
0: हाँ जी,
1: काफी
0: हो
1: लंबा
0: गया
1: लंबा समय, क्या 8-10 साल बाद जाके फूल
0: हाँ, अठ
1: लगना है।
0: साल अठ दस साल के बाद होनी है जी। तो फिर उन्होंने फिर उन्ना चिर वेखने वास्ते भी चलो छोटिया मोटिया फसलां बीज लेंदे ने बिच लोकी, ते अपना कर लेंदे ने आड़ू ला लेंदे ने। लू अज कल जा उहदा बड़ा ट्रेंड है जी, उहदा अमरूद का जी। थैंक
1: अच्छा, तुहानूं बहुत बहुत शुभकामनावां,
0: यू
1: ते
0: जी,
1: साडे नाल गलबात करने तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: थैंक यू वेरी मच जी। तुसीं इस काबिल समझा कि असीं इहनूं ते इस डे दे उत्ते आपां अपना दस सकीए जी। मेहरबानी सर तुहाडी, बहुत
1: थैंक
0: बहुत
1: यू जी,
0: थैंक यू सर,
1: थैंक यू जी,
0: थैंक यू
1: थैंक
0: सर,
1: यू।
0: सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।
1: हाँ जी, रुड़िया राम जी,
0: श्रृंगारा सिंह जी, दो कबूल गाउन दे लाउने आ।
1: ला दियो जी फिर।

प्रबंध करिए। तो सब तो पहले जो मुख्य साडा खर्चा हैगा वो हैगा चारे का खर्चा, हरे चारे का, सुके चारे का खर्चा। तो इस नूं काबू करना बहुत जरूरी है। इस नूं काबू करन दे लई हरे चारे का असी अचार बना सकते जिन्हें आपां साइलेज कहने आ, क्योंकि कई बार हरे चारे की मौसमी घाट हो जाती है, उस वेले हरा चारा सानूं महंगा लेना पै जांदा। तो सानूं फिर इस चीज़ तो बचण लई जदों हरा चारा वाधू है सस्ते रेट पर मिल सकता सानूं उस उदों लै के अचार बना के रख लो, ता जो सारा साल असी सेम रेट पर ते पशुओं नूं चारा मुहैया करवा सकीए। इसी तरह ही तूड़ी का खर्चा है, जदों तूड़ी सस्ती हैगी है उदों असी लै के स्टोर कर सकते हैं, ता जो सानूं ऑफ सीजन पर महंगी तूड़ी ना लेनी पवे। फीड का खर्चा भी काफ़ी लगातार वाधा जा रहा है, काफ़ी खर्चा होंदा फीड पर। इस करके फीड के खर्चे को काबू करने लिए सानू कोशिश करनी चाहिए है कि असी अपनी खुद की फीड तैयार करिए। यूनिवर्सिटी वालों ट्रेनिंग ले सकते हैं असी फीड किवें तैयार करनी है, और फीड असी अपनी निगरानी दे विच खुद तैयार करवाइए। सानू पता होएगा उहदे विच किहड़े किहड़े इनग्रीडियंट जा रहे हैं, वधिया क्वालिटी के इनग्रीडियंट पावांगे तो वो एक तो पहली तो गल उहदी क्वालिटी वधिया होएगी उस फीड की, नंबर दो ते बाजार नालों सस्ती भी पएगी। तो इस तो अगे लेबर का खर्चा, किसान भीरों लेबर का खर्चा जिहड़ा ये भी कुल खर्चों में 20-25% हुंदा। सो लेबर के खर्चे को अगर असी काबू कर लईए तां वह भी साडा मुनाफा वधाउण विच काफ़ी सहाई होगा। तो लेबर के खर्चे को काबू करन दे विच सब तो पहले तो अगर साडे फार्म का साइज छोटा है, मान लो साडे कोई 5-7 मझां गावां हैगियां ने, सानू लेबर रखनी नहीं चाहिए, सानू खुद कम करना चाहिए। उस तो बाद अगर साडा फार्म का साइज़ थोड़ा वड्डा हुंदा है, मान लो 15-20 पशु साडे कोल हैगे आ, फिर तुसी एक कम रखण बारे सोच सकते हो। पर उहदे विच भी ये है कि तुहानू खुद भी नाल कम करना पैना, क्योंकि वह काम तुहाडी निगरानी दे विच वधिया कम करेगा। जेकर तुसी खुद शहर च बैठे हो फार्म ते काम छड्या होया, फिर भी तुहाडा सही काम नहीं करेगा। तो इस करके तुसी लेबर दे खर्चिआं नू काबू करन दा पूरा ध्यान देना। तो होर नुकता इहदे च मैं तुहानू दस्सदा, वेस्टेज नू घटाउणा। किसी भी तरह की किसान भीरों वेस्टेज हैगी है, भावें वह चारे की वेस्टेज है। कई बार असी चारा पा दें, लोड़ तो बाद चारा पा दें पशुओं, बाकी का वेस्ट हो जाता। तूड़ी की वेस्टेज, फिर बिजली की वेस्टेज, कई बार बिना लोड़ तो पखे चलते रहेंगे, बिना लोड़ तो पानी वगदा रहा। सो इन चीज़ों की सानू किसी भी किस्म की जी वेस्टेज हैगी है उसनों जेकर घटाइए, साडे खर्चे अपने आप घट जाएंगे। तो इस तो अगे जो किसान भीरों असी मुनाफा वधाउण दा थोड़े जे होर मैं नुकते तुहानू दस्सदा। एक तो मैं खर्चे घटाने के नुकते दस दिते, मैं तुहानू इहदे नाल मुनाफा वधेगा। कुछ होर मैं नुकते दस्सदा कि मुनाफा किवें वधाउणा है। सब तो पहले तो ट्रेनिंग लैनी चाहिए है जी। असी पशु पालन का किता किसान भीरों किया होया, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये ट्रेनिंग गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाणा वालों भी कराई जाती है, डेयरी विकास महकमा जो पंजाब सरकार दा उस वालों भी कराई जाती है। सो ये ट्रेनिंग दे विच पूरी विज्ञानिक जानकारी तुहानू दित्ती जाती है कि पशुओं का रख रखाव, उन्हां दा होर टीकाकरण, होर उन्हां दा खाण पीण दा प्रबंध किवें करना विज्ञानिक ढंग दे नाल। सो ये तुसीं ट्रेनिंग जिहड़ी हैगी आ जरूर लगाउणी आ। सो एक बार लगा के ट्रेनिंग नाल काम नहीं चल जाणा, ये ट्रेनिंग तुहानू वार वार लगानी पैनी है तां जो तुहाडा नॉलेज जिहड़ा हैगा अपडेट हुंदा रहे। तो उस तो बाद फार्म का साइज़, सो किसान भीरों फार्म का साइज़ बहुत मैटर करता। तो जिवें शुरू मैं गल की सी, उत्पादन का पद्धर वधाउण दे नाल प्रति इकाई खर्चे घटते हैं। सो जिवें जिवें साडा फार्म का साइज़ वधूगा, साडा उत्पादन अपने आप वधूगा, तो प्रति इकाई खर्चे जिहड़े साडे घटते जाने। इस करके कोशिश करो फार्म का साइज़ जिन्ना वधा सकते हो, जिन्ने एक्सटेंट तक पॉसीबल हैगा उसनों आपां वधाईए ते अपने खर्चे घटाइए। तो इस तो बाद किसान भीरों पशुओं की सेहत का ख्याल, अगर असी पशुओं की सेहत का ख्याल ना रखांगे, जो तुसी ट्रेनिंग विच सीख के जाने हो साडे कोलों उहदे मुताबिक पूरा उन्हां दा टीकाकरण, होर रख रखाव, खाण पीण का ध्यान रखोगे तो सेहत वधिया रहेगी। अगर कोई अणगहली रह गई तो पशुओं की सेहत बिगड़ी है, तो उहदे नाल सानू सीधे अते असिधे दोनों तरह के जिहड़े हैगे आ घाटे चलने पैंदे ने। सीधे घाटे दा किसान भीरों हो गए ने कि पशु ने दुध देना घटाता, दवाइयां दा खर्चा हो गया, डॉक्टरी का खर्चा हो गया। तो असिधे प्रभाव भी कई तरह के पेंदे ने, जिमें कि मान लो एक सूए तो दूए सूए के विचकारला जिहड़ा फैसला हैगा, मान लो वह 15 महीने है, तो जेकर पशु बीमार हो जाता तो उही जिहड़ा एक इंटरकाबिंग इंटरवल का गैप हैगा 15 तो अगर 16 महीने हो गया, तो वह 1 महीने का साडे ते फालतू का खर्चा पै गया। सो इस करके किसान भीरों पशुओं की सेहत का पूरा ध्यान रखना, तो साइंटिफिक वे दे नाल माहरां दे नाल तुसी कॉन्टैक्ट रखो कि

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148 AE लई 6 लेन वाली सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसंख्या तब्दीलियां बारे कायम उच्च पदरी कमेटी को अपनी सिफारशा छेती ही सौंपने आख्या। श्री अमरनाथ यात्रा लई श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंचा। पंजाब सरकार वालों अज संगरूर जिले के धूरी तो मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना की शुरुआत। मौसम विभाग ने कल तो 6 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी किया। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत ते इंग्लैंड दरम्यान 5 20-20 मैचों की लड़ी का पहला मैच अज इंग्लैंड च खेडिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अज दिल्ली विच द्वारका एक्सप्रैस वे नैलसन मंडेला मार्ग वसंत कुंज नाल जोड़न वाले राष्ट्र

आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ, नैन मनुखी शरीर का सब तो अनमोल अंग है। इन्हां राही असी इस सुंदर संसार नूं वेखते हाँ, सीखते हाँ ते समझते हाँ। नैन सिर्फ देखण दा साधन नहीं, सगों मन दे भावां नूं भी बिना शब्दां दे प्रकट करते ने। खुशी, दुख, प्यार, ममता ते दर्द वर्गियां भावनावां अक्सर अक्खां विच ही झलक जांदियां ने। इसलिए नैना दी संभाल करनी बहुत जरूरी है। इसलिए संतुलित भोजन खाना, अक्खां नूं आराम देना ते नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी है। तंदुरुस्त नैन ही सानूं जिंदगी दे हर रंग दा असली आनंद माणन दे योग बनांदे ने।

आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। कहिंदे ने कि चंगे शब्द ते चंगा व्यवहार हर दिल नूं जित लैंदा है। किसी नाल प्यार ते सत्कार दे नाल जदों गल करो ते अगले दे मन विच वी घर कर जांदी है। रिश्ते दौलत नाल नहीं भरोसे दे नाल बनदे ने। जनाब कहिंदे ने कि माफ करना बहुत वड्डी ताकत है। निमरता मनुख दा असली कहना है।

जिंदगी विच इंसान नू कदे भी मुस्कुराना भुलना नहीं चाहिदा। ते असली पछाण जिहड़ी बनाउणी है उह चंगे कम्मां राहीं ही इंसान नू बनाउणी चाहिदी है। ते हर दिन कुछ चंगा करन दी और कुछ चंगा सिखण दी कोशिश जरूर करनी चाहिदी है।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 8:45 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਵਜੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे

0: दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय

0: और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज

0: 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोइन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई

0: 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
1: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो UPI है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
0: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
2: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना है, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
0: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
1: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
0: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना UPI जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली UPI नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
0: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
1: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या MSME के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
0: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
1: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम

0: जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ दो ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम गैफाम बोलते हैं, गूगल एप्पल
1: जी
0: वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा। और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है, वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन।
1: जी
0: हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज में।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें या ना करें इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की एक हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी AI को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं, और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं, और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपये का भुगतान हुआ, वो भी
1: जी
0: AI है।
1: जी
0: वो भी हमारे गाँव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी AI के एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है, जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहाँ से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको अनेबल भी किया। और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा, जो सबसे सस्ता है
1: जी
0: पूरे विश्व में, वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है, उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे। वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूरदराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस AI फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है,
1: जी
2: जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने,
1: जी
2: तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते हैं, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये
1: जी
2: मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द डिपो इकोसिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही AI का अभी कुसुम जी ने बात किया कि AI कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में
1: जी
2: GPUs दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?

0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए। तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है।
1: जी
0: लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है, उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स। आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड
1: जी
0: दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए, इसमें काफ़ी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे
1: जी
2: स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की Top 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है,
1: जी
2: ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे
1: जी
2: 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल स्टैब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया।
1: जी
0: सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग का बोलते हैं, ये
1: जी
0: बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर से। और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी
1: जी
0: करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है TG सेमी में।

0: प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन, जैसे इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवर्निटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
2: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
3: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है चाहे डिफेंस हो चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर सेक्टर से हो, तो ये सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज, आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
3: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो

0: अभी एआई के लिए भी हम लोगों को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब, वो फेब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और ये इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे। जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजेक्शन्स या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की। हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में। ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉरपोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है। इसमें ONDC जैसी पहलों या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं, उस तरह की पहलों, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल FTAs साइन कर रहे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी, या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
2: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे आप पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को

0: एग्रीस्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं।
1: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि
0: जी
1: ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है
0: जी
1: जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
0: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 10 बजे ने हूँ पेश ने मुख खबर। केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय शाहराह NH 148AE 6 लेन वाली सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसंख्या तब्दीलियां बारे कायम उच्च पदरी कमेटी को अपनी सिफारिशां छेती ही सौंपने लिए कहा। भारत ते मलेशिया ने आज नवी दिल्ली विच 92वीं सब कमेटी की मीटिंग दौरान दुवल्ले फौजी सहयोग के पहलुआं की समीक्षा की। एक राष्ट्र एक चोण बारे सांझी संसदी कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने लोक सभा अते राज विधानसभा दीआं चोणां विच इक्को समय करवाउण दी लोड़ ते जोर दित्ता। पंजाब समेत देश भर विच विकसित भारत रोजगार ते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून अज तो लागू हो गया है। पंजाब सरकार वल्लों अज संगरूर जिले दी धूरी तो मुख मंत्री मावां तीआं सत्कार योजना की शुरुआत। श्री अमरनाथ जी यात्रा ले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंचया। पासपोर्ट अर्जी फीस विच वाधा अज तो लागू होया। बठिंडा डब वाली कौमी शाहराह ते अज सवेरे एक सड़क हादसे विच राजस्थान के 4 श्रद्धालुओं की मौत, 8 मामूली जख्मी, मरण वालों विच 2 जोड़े शामिल ने। मौसम विभाग ने कल तो 6 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ विच कई थावां ते भारी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी किया अते मर्दां दे क्रिकेट विच भारत अते इंग्लैंड दरमियान 5 2020 मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज इंग्लैंड विच होवेगा। सो ए सी जी मुख खबरां। असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 10:02 हुए ने। हुण पेश है प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश।

आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। प्रोग्राम च अगले गीत ने सुनने साडे को फरमाइश जड़ी पहुंची है जी। फरमाइश भेजन वाले ने अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर, ये सानू हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो फरमाइश भेज रहे ने। दाऊ सराय सहारनपुर तो अनबर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सर मुजक्कर और जरीफ अंसारी, पिंड हीरावाली फाजिलका तो सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु ते इना दे बहुत सारे साथी, डॉली नवराज, हिमांशी, शैलेंद्र सिंह, गुरदयाल सिंह चंडीगढ़ तो सानू फरमाइश भेज रहे ने। पिंड फ्रांसी हिसार तो राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, चौंक पत्तियां वाला जिला श्री फतेहगढ़ साहब तो बलविंदर बिल्ला, माधोपुरी राज कौर, ज्योति गोल्डी, बब्बू टिवाना, रामलाल खरोड़ा ते इन्हां दे बहुत सारे साथी जड़े ने सानू फरमाइश भेज रहे जी। कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर तो मुहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर अमीर मुन्ना नजीम, पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर राजकुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू ते गुड्डू सानू फरमाइश भेज रहे ने। चकला बाजार समाणा शहर तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी समाइल खुशदिल, हसमुख संजीव, सुनीता आरजू, महक ते इन्हों का पूरा ही खुशदिल परिवार सानू फरमाइश भेज रहे जी। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल तिमान, कृष्णा ते इन्हों के बहुत सारे साथी सानू फरमाइश भेज रहे जी। पिंड कुमारहेड़ा सहारनपुर तो सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम ते अदिब, आदर्श नगर मनोड़ तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, शाइना ते निवान शर्मा सानू फरमाइश भेजे ने। पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा,

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से

0: अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसंख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 km long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he's delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism.

0: याद करते हैं, इतना प्यार आकाशवाणी जलंधर को देते हैं।
1: मैं आपको भाई जो मैं आपको ये चीज में बताने के लिए मैं जो भी हूँ ना सर, मैं जो भी हूँ, मैं सौगात के थ्रू मैं केरल में मैं सरकारी जॉब करता हूँ सर। मैं अपना ना सौगात के थ्रू में हूँ सर। मैं आपको क्या बताऊँ, और मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, कोई भी है ना, कोई गिला सिखा कोई भी होता नहीं इंसान को, ये ना मुँह पे बोलना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं हंसते रहता, मेरा नाम संतोष है, मैं किसी से गिला सिखा मैं नहीं करता, और मैं ये चीज में बोलता हूँ माँ बाप का कदर करना चाहिए।
0: चलिए, बहुत अच्छा आपने आज मैसेज दिया। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं इंडिया को पूरा गवर्नमेंट को मैं बोलता हूँ, किसी का लड़का सरकारी जॉब करे उसका 10% सैलरी उसका माँ बाप के अकाउंट में जाना चाहिए।
0: चलिए, आपने एक सजेशन दिया है। उम्मीद करते हैं हमारे जो हायर अथॉरिटी अगर कुछ सुन रहे हैं तो उन तक मैसेज जरूर पहुंचे। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: सर? अपना मन पसंद का सुना दो।
0: चलिए, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही कॉल करते रहें।
1: थैंक यू सर।
0: धन्यवाद।

0: जी कौन बोल रहे ने?
1: डेरा कलोनी फाइल का तो शर्मा सागर बोल रहा सर जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात दे विच।
1: धन्यवाद।
0: होर सुनाओ की हाल चाल है?
1: बहुत वधिया सर जी, सादा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं गर्मी से।
0: चलो शुक्रिया जी। हाँ तुसी एक गल जरूर कही है, गर्मी दे विच असी यही पूछना सी वी मौसम दा की हाल चाल है।
1: हाँ जी गर्मी कह रही है।
0: ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।

0: नंबर ब्लॉक ही दो साढ़े को पहुंच के नहीं आओ गलबात करते हैं। लो जी केड़े दोस्त आए ने आओ गलबात करते हैं। हेलो
1: हेलो, मैं
0: हाँ जी कौन बोल रहे ने?
1: मोहनचंद्र बोल रहा हूँ जी, डनवर यूएसए जी।
0: क्या बात है, यूएसए वाले हो, की हाल चाल है?
1: हाल चाल वधिया है जी, तुम सुनाओ अपना।
0: बहुत वधिया। यूएसए तो कॉल चल के आकाशवाणी जलंधर ते पहुंची है, इस तो ज्यादा असी मतलब इन शब्दों च बयान नहीं कर सकते।
1: अच्छी कॉल मिल गई मेरी
0: देखो तुसी प्यार ना याद कीता है, तुहाडी इनी दूरों चल के कॉल साडे कोल पहुंच गई है।
1: हाँ जी, हाँ जी। हाल
0: ते की हाल है यूएसए दा, तुहाडा की हाल चाल है?
1: चाल वधिया, मेरा उपराले जी वधिया, गड्डी चल रही है।
0: चलो बहुत शुक्र है जी, असी यही दुआ करते हैं प्यार इदे बने रहे। और अज की खास सुनना चाहते हो?
1: आज भी कोई भी सुना दो गाना, ऐसे सारा प्रोग्राम सुनता रहा ना।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता तुहानू साडी पसंद तुहानू जरूर पसंद आएगी। फोन करने लई बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके, थैंक यू जी।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलों दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर। ये ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। ये बाणी फरमान भगत रविदास जी दे हिरदे दी वेदना है। आप जी प्रभु चरणा च बेनती करदे ने कि हे माया दे पति माधो, जेकर आप जी प्रीत ना तोड़ो ता मैं कदे भी नहीं तोड़ांगा, क्योंकि मैं ता होरना नालों प्रीत तोड़ के आप जी दे नाल सच्ची प्रीत स्थापित कीती है। माधवे तुम न तोरा हो तो हम नहीं तोरा है, तुम स्यो तोर कवन स्यो जोरा है। प्रभु दे नाल मिलाप दी तांग जीव रूप स्त्री नू मुड कदीम तो ही रही है, ताही फिर ओ प्रभु चरणा विच बेनती कर दी है कि हे प्रभु, मैनू कोई ऐसा संत पुरुष सत पुरुष मिला दियो जो मेरी प्रीत आप जी नाल स्थापित करवा सके। प्रभ मिल बेकाओ प्रीत मन लागी, पाए लगाओ मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़पागी। सर्वण करदे आं भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

0: को संत मिले बड़पागी। इस शब्द का गायन किया पाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह।
1: ए पावन पवित्र शब्द शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज बाणी दे संपादन करता धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी का उचारिया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच राग गौड़ी अंग 204 उपर सुभायमान है। इस शब्द विच परमात्मा नूं मिलन दी प्रीत दा वर्णन है। सिद्धांत यह है कि जदों पिछले जन्मां दे शुभ कर्म जो पिछले जन्म विच कीते हन उस दे अंकुर जदों फुट पैंदे हन तां परमात्मा नूं प्रीत करन वाले रसक बैरागी उस प्रभु दे सुत्ते सिर दी दर्शन कर लैंदे हन, क्योंकि मिलाप दा मुढ प्रभु प्रति लगन है। जदों कोई जीव इस्त्री लगन विच मगन हो के प्रभु प्रीतम अगे अरदास बेनती करती है तां उस नूं फल लगदा है। इस शब्द विच प्रभु प्रीत प्रभु अगे अरदास प्रभु दे घर दी कथा सुननी सारे शब्द दा केंद्री भाव शब्द दियां रहाउ वालियां पंगतियां विच दर्ज है। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी। हे भाई मेरे मन विच परमात्मा नूं मिलन लई प्रभु प्रीत लग गई है, भाव प्रभु दा प्यार पैदा हो गया है। जे कोई मैनू परमात्मा नाल मिला देवे तां मैं उस संत दे भाव मिलाप करवाउण वाले दे चरणी लग जावां ते उस नूं प्रभु दे मिलाप दी बेनती करां। इस प्रथाए धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी राग जैसरी विच भी फुरमांदे हन, कोई जन हरस्यों देवें जोर चरण गहो बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। कोई रब दा प्यारा मैनू रब नाल मिला देवे तां मैं उस दे चरण पकड़ लवां ते उस बारे शुभ बचन बोलां भाव उस दी सिफत करां। जे मैनू अपने प्राण भी देने पैण तां मैं अपने प्राण भी उस नूं ही दे देवां। बाणी दा सिद्धांत है कि जे परमात्मा नूं मिलना है तां पूरा गुरु ही विचोला बन के मिला सकदा है। रामकली की वार विच गुरु अर्जन देव जी एक श्लोक राही सिक्ख्या दिंदे हन, जे प्रभु अगे अरदास करनी है तां प्रभु बेनती सुन लैंदा है। मैनू पूरा गुरु ही मिला सकदा है जिस अगे मैं अपना मन तन समर्पित कर देवां। चौथे पातशाह जी गुरु रामदास जी सुही राग विच इस प्रथाए बख्शिश भरिया बचन उचारदे हन कि जे कोई सज्जन मैनू परमात्मा दी प्राप्ति करा देवे तां मैं ऐसा सज्जन ही इस जगत विचों लब्भां। अमृत बचन हन, कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मिलाए सतगुर मिले हर पाया मिलिया सहज सुभाए। ओ सज्जन भी गुरु ही है जिस द्वारा हर पाया जाता है, भाव प्रभु मिलाप हुंदा है। विचार अधीन रहो वालियां पंक्तियां हन, पाए लगो मोहे करो बेनती को संत मिले वडभागी। भाव हे भाई जे प्रभु दी प्रीत पैदा हो जावे तां पूरे गुरु ने ही तैनूं उस परमात्मा दा दर्शन करवाउणा है। तू पूरे गुरु दे चरणी लग जा, गुरु अगे ही बेनती करनी है कि मैनू परमात्मा दा मिलाप हासिल हो जावे। विचार अधीन शब्द दीयां पंक्तियां हन, मन अर्पों तन राखों आगै मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावै अन दिन फिरों तिस पिछै विरागी। सतगुरु जी उचारण करदे हन कि मैं अपना मन मैं अपना तन मैं अपना कमाया होया सारा धन अते अपनी मत भी उस अगे रखदे हां जो मैनू प्रभु दे घर दी कथा सुनावे, पा परमात्मा दे घर दी गल सुनावे। जदों मिलाप हासिल हो जाता है तां प्रेमी हमेशा अपने प्रीतम दियां बातां सुनदा है, प्रीतम दियां बातां करनियां चाहुंदा है।

मोहन प्राण मान रागीला, बास रहेओ हियरे कै संगे, पेख मोहेओ मन लीला। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

गुर रामदास चित्त बसाए, गुरु समरथ गै करिया, ध्रुव बुद्ध समत समारन का। हुन ध्रम

संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है त्रम पंथ धरयो धरनी तराप रह लिव धारण तावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है राव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है तारयो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रेदर सिद न छोड़े साथ दान बड़ा अतवंत महाबल सेवक दास कह हो तथ ताहे कहाँ परवाह कहूँ की जाके बसीस तरयो गुर हाथ तू सतगुरु चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहल अगम निगम उदरण जरा जमे अरवा गुर अमरदास तेरे थप्पे परगामी तारण तरण अग अंतक बदे न सल्ले कव गुरु रामदास तेरी शरण अग अंतक बदे न सल्ले कव गुरु रामदास तेरी शरण।

कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जमको नहीं त्रास। जिवे अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुरु से पदार्थ पायो

0: सच सल पण तू अटल राज अपग दल।
1: जाको मुन ध्यान धारे फिर तो सगल जोग कबहु को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गहे न तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेघ किए।

वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गहे न तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूठ भेघ किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस ओही हो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं।

तेज पुंज त्यों लोक परगासे, देखत दर्श भटक परम भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा तलबत, आलस मूह जो कुसुम सुबासे, विद्यमान गुर आप थप्यो तिर, साचो तख्त गुरु राम दासै, तीन भवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, आपन आप ही उपायो, सुर नर सुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर, गण गण धर्म को जंत फिरे, अविनाशी अचल अजोनी संपो, पुरखोत्तम अपार परे, करण कारण सम्राट सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तें हर परम पद पायो, नारद त्रू प्रहलाद सुदामा, पुब भगत हर के जो गण, अम्बरीक जय देव त्रिलोचन, नामा अवर कबीर पणं, तिनको अवतार पयो कल्पिंतर, जस जगत त्रिपा

सुखहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसोह कुरसोह चट्टिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह

सोरठ महला पंजमा कर पहला तितुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद किस हो जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसे वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरपो निरंकार पव खंडन सब सुख नवनिद देसी किस हो जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिसे वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरपो निरंकार पव खंडन सब सुख नवनिद देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर त्याया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा धन दिया सुख दाता निखुट न कभी जाई आनंद भया सुख।

सतगुर मेल मिलाई, मन नाम जप नाम आराध, अनदिन नाम वखाणी, उपदेश सुन साध संतन का, सब चुकी कान जमाणी, जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी।

सब किश कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला राख लेहो नानक जन तुमरा।

अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारे।

पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होवे प्रवान ता कसम का महल पाए सी खसम पावे सो करे मन हुचिंदया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी ता दरगह।